ఏమైనా గురుకులకు పుడమే కాదు నవమి పై సజావస్థి చుట్టి చుట్టి పాకి పురుళ్ళగా తెగే లగా పురుగా తు నవమి దేవీనే నవమిని ఖాయి సయ్యద్ గురు విషయ పై సజ్జా గాలి तो गुरु का हुक्म ही बने आए तेरी पर क्योंकि हुक्म इस वक्त हुक्म ने मालिक की बख्शिश नाल जेड़ा हुक्म देना उसकी रहमत भी ना ये तो हुक्म नहीं मनिया तो मैं जरूर मनना ये अपने आप रह जाएगा गुरु जान के तेरी सेवा ते जे भजे नसे गल तो सामने कोठी बंद भी कर रहे हैं। मैं गुरु का हुक्म मरना भाई सज्जा उठिया तुरन लगा मैनू कौन है बंद करने वाला बुद्ध विशाह ने मुरीदा ने इशारा किया इन्होंने पकड़ के भाई सज्जे कोठी बंद कर बुद्ध विशाह ने मेरा बाल बच्चा भुख नाल मर जाए बुद्धू शाह ने क्या नहीं जिन्हें हुक्म दिता है वो आपे रक्षा करेगा ये तेरे मन की कमजोरी की रक्षा करेगा बुद्धू शाह एवे तो गल्ला बुद्धू शाह दियां सुन सुन गल्ला सिख धर्म जिगा बच आके मुश्किल नाल उठाया उसनू और मुंह च पानी पा के कहता सतगुरे की किया मैनू उधर कैद पता है मेरा बाल बच्चा सब रुके मर्जी कौन खिलाती जा बंद एक दिन बीतिया कुछ नहीं खादा पीता दूजा दिन होया बुद्धू शाह ने किया सजे प्रसाद तक लगनी नहीं मैनू भुख नहीं तीजा दिन होया सोचे लगा मैं बार बच्चे तो भुख ना मर गए हो गए तू भुखा क्यों मरना भुख बड़ी राज होंगे भुख बड़ी पर्वत है फरीद ने कहा मौतों भुख बड़ी इंसान भुख से कई बड़िया बड़िया गलतियां कर मैंने भी लिखा दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सब दुआर जमदूत एक दुख रोग लगे सन खाए व्याज न होने सात पानी छकन लग गया नौ महीने बीत समा नौ बीत जाए समय का पता ही नहीं पलों दिया घड़िया घड़िया ने सके चिंता के दिन मिनटा के घंटे घंटिया ने पैर पैर के दिन दिन के हफ्ते हफ्तिया ने महीने महीनिया ने साल साल दिया सदिया सदिया के युग बीते जा रहे युग अखी केरे माट के पल पल नहीं विहारे पल पल करके ये आयु बीती पता नहीं मन जंजाल ना छोड़ी जम दिया जमहुआ है दिते पैर पैर के घड़िया अगर कहते आव घटे पंखी नौ महीने लै पैसा तेरे पौ पद मुकले हैं अज नौ महीने बीत गए हैं तू जा सकते तू जाओ किधर जाओ बाल बच्चा तो भुखना मर गया तू कोई आसरा नहीं किस पास जाओ तू बेचारे कहा जी मेरे को गुरु को चला गुरु को बुद्धू शाह अब तो मेरा कोई बाल बच्चा बचे नहीं जी कोई बच भी गया होगा तो उन्होंने भी रोक के मरांगा कि गुरु का नाम भुल के नहीं जाए लुकी बंदी छोड़ के चंगा बंदी छोड़ गुरु नौ महीने की कैद दे मैं भी चल सही बुद्धू शाह ने कहा भाई सज्जा ये भी कोई राज है तू नहीं समझ मच्छी की जाने सागर के डावे
پانی چ رہی ہوئی مچھلی کو ساگر کا انت نہیں تم کرے آج پھر پڑھیے ابھی اکیلے گرو اپنی دلیل پہ پرکھن لگے گرو کی سکھی کو اپنے خیالوں پرکھ ارے غلط پانی لکھے سارے اس کے

वही निकाह देना वेखे भगवान ने किया है दरबार उसका नाम भी पूछ लेना सी दरबार ने किया नाम भी दस क्या नाम है द्वार खड़ा तुझ

अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहेगुरु अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत।

अच्छा भगत लोग उस गोपाल राय की सेवा करते ने अकुल नरेंजन जिदी कोई कुल नहीं जेड़ा माया दे प्रभाव तो उत्ते है उस गोपाल राय की भगत लोग सेवा करते ने भगती करते ने ते ओदे कोलों भगत दान दीजे जांचे संत जन उस गोपाल की सेवा करके ते भगत

सराय चा बड़ा वड़ा शामियाना है तंबू है केड़ा ऐ बादशाह तू अपनी वास्ते तंबू लवाना है पर उस गोपाल राय दा तंबू केड़ा है ये सारा संसार चार दिशा

सरायचा है, तंबू है, इंसान जहाजा ते चढ़ लवे, राकटा ते चढ़ लवे, कितना भी यतन कर लवे, पर इस परमेश्वर दे तंबू विचू इंसान बाहर नहीं निकल सकता। ओदे घर विच बैकुंठ है, अते सपत लोक समान पूरी आले, ए जड़े पताल ने ए ओदे घर विच

जेड़ा मेरा गोपाल राय है जिदे कर सूरज चंद्रमा दीवे तरह ने, मौत जेड़ी है ओदे कर खेड़।

महादेव ने वाणी च बयान कीता कि बादशाह कहन लगा ऐ नामदेव ऐ गां मरी हुई पई है इस नु जिंदा कर दे जे गां जिंदा ना हुई ता मैं तेनु जानो मार देंगा। नामदेव जी बादशाह दे ख्याल ते अपनी विचार शब्द विच इस तरह

कि जद बादशाह ने हुक्म दिता सी कि नामदेव नूं हाथी दे अगे सुट के हाथी दियां सुंडां दी मार पवाई जावे ते नामदेव जी कहिंदे ने साडी मां उस वेले रोण लग पई।

बड़ा क्या है पुत्र, ऐ मां जा, मैं तेरा पुत्र नहीं, ना तू मेरी मां है। मैं तेनू छड़ सकदा पर राम दा नाम नहीं छड़ सकदा। पिंड पड़े तो हर गुण गाए, पिंड क्या है शरीर नू, इस शरीर भावे खत्म हो जाए।

का नाम देव जी ने किया ऐ परमेश्वर, और कुछ ना कर बस गां जिंदा कर दे। परमेश्वर ने कृपा की थी ते मरी हुई गां जिंदा हो गई, वच्छे समेत ते नाले दूध दियां दो मटकियां भी भर गई।

हाथ जोड़े भगत नामदेव दे चरणा ते मथा टेकिया आखिया ऐ नामदेव बख्शी हिंदू मैं तेरी गाए मैनू अपनी गां समझ के माफ कर दे। तो नामदेव जी ने बादशाह नूं उस वक्त

भगत नामदेव जी ने उस वक्त नदी किनारे बैठ के ये शब्द उचारिया, जे गुरु दयाल हो जाए मुरार कहंदे ने कृष्ण भगवान ता कृष्ण भगवान दी प्राप्ति हो जाती, अगर गुरु दयाल हो जाए ता उतरे पार इंसान संसार सागर तू

पर जे गुरु दयाल हो जाए देहुरा फिरे देहुरा कहंदे ने मंदिर ता ओ पूरे पत्थर दे बने हुए मंदिर घुमा दिंदा नामदेव नूं जदों पंडतां ने नीवी जादा समझ के मंदिर विचों कढ़िया सी ते नामदेव जी मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए सन ते परमेश्वर ने भगत बदले पूरा मंदिर घुमा दिता तो भगत जी कहंदे ने

0: और
1: उस परमेश्वर दे घर की है। भगत जी ने बयान किया, जांचे कर निकटवर्ती अर्जन ध्रुव प्रहलाद अमरीक नारद नेजे सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला एते जी जांचे हैं करी सर्व व्यापक अंतर अरे प्रणवे नाम दियो तांची आन सगल भगत जांचे निशान। ऐ बादशाह ओ परमेश्वर इतना बयांत है ए जो मैं दसे है ए ता कुछ भी नहीं, सब कुछ होद है ओ बनान वाला है। प्रणवे नाम दियो तांची आन नामदेव आखद है ऐसे गोपाल राजे दी असी शरण विच हां ते सारे भगत सारी दुनिया ओदा ओट ते आसरा लैंदी है। इस करके भाई राजे हो ताकतवर हो ता मान ना करो, क्योंकि उस गोपाल राय तू कोई भी वड्डा नहीं।

प्यास लगी, पानी दी पाल की थी, एक खूह नजर आया। उस खूह दे कोल जदों गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन, क्योंकि पानी बहुत नीवा सी। खूह दे विचों ओह पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल। पानी देखिया बहुत डूंगा है, बहुत नीवा है। पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं। ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंचे हुए महापुरुष सन, अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे, पानी पीता। पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए, चेलिया नू पियाया, कुछ लोकां नू भी पियाया, ते नामदेव नू कहा, नामदेव तू भी पानी पी ले। नामदेव जी कहन लगे, मैं पानी नहीं पीना जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे, फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है, तू भी भगत है, तेरे विच भी शक्ति है, तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू, मैं पानी तां पीना जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे, नहीं तां मैं पानी नहीं पीना, क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनदा कि ओ साडी प्यास बुझावे। ए कह के नामदेव जी उस खूह दे

जिस तरह मारवाड़ देश विच नीर कहिंदे ने पानी, पानी दे नाल लोक प्रीत करदे ने। बेल बालहा कर हला, और जिस तरह ऊ

जिथे अंब लगा वे कोकल जा बैठदी अते खुशी दे नाल गान लग पैंदी ए। इसे तरह मेरे रमैया जिवें धरती पानी नाल प्यार करदी ए बरसात नाल, पवरा फुल दे नाल, कोकल अंब दे

मान सरोवर हंसला हंस जेड़े ने मान सरोवर नाल प्रीत करदे ने मान सरोवर ते रहंदे ने भगत नामदेव जी बयान करदे ने चकवी को जैसे सूर बाल है चकवी जिस तरह सूर दे नाल

तरनी के औरत नु कांत पति जिस तरह औरत पति नाल प्रीत कर दी है, ऐसे तरह है परमेश्वर मेरे रमैया।

हर था जिस तरह तू है इस तरह इस नामे दे मानवे च भी ए परमेश्वर तू है गए ए नामदेव भी तेरे नाल इन्ना प्यार कर दे जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होने।

अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नहावण ताईं स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के रोजाना ही गंगा इशनान करन वास्ते

रास्ता नहीं सी क्योंकि कबीर लम्मा पिया सी। स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू। ते कहंदे ने भांडे विच जेड़ी चीज पाई होवे ओही निकलदी। जे किसे भांडे विच दुध पाया है तां दुध ही निकलेगा, जे किसे भांडे विच शराब पाई है तां शराब निकलेगी। पर जेड़े महापुरुष ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है तां नाम ही निकलना। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू, ते नाले के उठ राम के राम कहो, ए सौण दा वेला नहीं, ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आ बयान करदे ने।

ऐसा असर हो गया। स्वामी रामानंद दे पैर लगा के एक कहन दा के उठ राम के राम को। भाई गुरुदास जी कहंदे ने राम कबीरे भेद ना पाई, राम विच ते कबीर विच कोई फर्क ना रहा। इशनान करके स्वामी रामानंद चले गए। कुछ समय बाद कबीर साहब स्वामी रामानंद दे आश्रम वाल तुर पए। स्वामी रामानंद जदू इशनान करके जांदे सन, दरवाजा ढो के चौंकड़ा मार लेंदे सन और मन करके परमेश्वर नू इशनान कराया करदे सन। इशनान कराण अज भी बैठे मन करके, कपड़े भी पवाए, सिर ते ताज भी रखे, मुकट कलगी भी रखी, पर हार पाना भुल गए। कबीर साहब स्वामी रामानंद दे दरवाजे दे बाहर बैठे। उस पासे स्वामी रामानंद सिर ते मुकट रख बैठे, ता ख्याल आया कि मना हार ते गल विच पाया नहीं, हार जो तक ना पावा पूजा पूरी नहीं होनी, जे ता हार मुकट ला के पावा ताई सोभा वाली गल नहीं, मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकता क्योंकि हार छोटा है। ते चिंता विच नहीं कि सिर ते सजाया मुकट लाना ठीक नहीं, ते मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकता किवें का। ता कबीर साहब बाहर बैठे सन, उन्ना जान लिया कि स्वामी रामानंद क्यों परेशान ने, क्योंकि जिहड़े नाम जपदे ने उन्ना विच ते परमेश्वर विच भेद नहीं रहिंदा, ओह एक दूसरे दे मना दियां जानदे ने। ते कबीर साहब ने बाहरों कहा, स्वामी जी हार जी मुकट तो नहीं पै रहा, ते हार दी गंढ खोल के हार गल विच पा के फिर गंढ मार दियो। आवाज सुनी स्वामी रामानंद बड़े हैरान होए, उठ के बुआ खोलिया, बार कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे तू कौन है? कबीर साहब कहन लगे मैं कबीर हां, तुसा मैनू गुरु दीख्या दीती। स्वामी जी कहन लगे मैं ता तेनू गुरु दीख्या दीती नहीं, अपना चेला बनाया नहीं। ता कबीर साहब कहन लगे स्वामी जी तुसी गंगा ते अमृत वेले इशनान करन गए, मैं पौड़ियां ते लम्मा पिया सी, तुसा अपना चरण मेरे शरीर नू लाया ते कहा सी उठ राम के राम को, उदों दा मैं आप दा सेवक बने। ए सुन के ते स्वामी रामानंद कहन लगे कबीर तू सेवक नहीं, तू ते मेरे नालों भी अग्गे चला गया है, तेरे विच ते राम विच कोई फर्क नहीं रहा क्योंकि तू ते मेरे मन दी भी गल जान लई है। और स्वामी रामानंद जी दा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, कत जाइए रे कर लागो रंग। ऐसा असर होया गुरु दे मिलन दा के कबीर विच ते राम विच कोई फर्क

तीसरा दिन चढ़ेगा। ते तन्ना कहन लगा हौं भी मुंह ना जुठालसा, तू रुठा मैं क्यों ना सुखावे। ऐ परमेश्वर जे तेरा धर्म है के पंडतां दे हत्थों खाना, ते मैं भी जाटना फिर मेरी भी जिद है कि जदों तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी कुछ नहीं खाना। तू मेरे नाल

0: परमेश्वर नु रोटी खवाई तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे लै भाई तन्ने आ रोटी तो असि खा ली हुण दस तेन चाहिदा की तू याद कीता मैं आया हुण मंग तेन की चाहिदा ता तन्ने ने हाथ जोड़ ले कहन लगा भगवान मैनू ए नहीं पता कि अरदास किवें करी दी लोक तेरी आरती करदे ने पर मैं तेरा आरता करना आप जी बयान करदे ने भगत अन्ना जी अपनी बाणी विच आप
1: गोपाल तेरा आरता
0: गोपाल कहंदे ने दुनिया नू पालन वाला परमेश्वर

चाहिए क्योंकि जिमीदार सी। पहली चंगी चाहिए, अनाज चंगा चाहिए ताकि इन चीजा वालों मैं निश्चिंत होके तेरी

भैंस मांगो लावेरी, गौ भी चाहिदी है ते मज भी चाहिदी है, पर होण लावेरियां, लावेरियां कहंदे ने दुध देण वाली। मज भी चाहिदी है, गां भी चाहिदी है, पर ओ जिहड़ियां दुध देंदियां होण।

पोतना अनपढ़। नाम जपन दे करके दर्शन करन दे करके किथे जा पहुंची है, पोतना अनपढ़ बाणी उचारन लग पे। उस तन्ने ते तन गुरु अर्जुन साहब ने होर कृपा की थी, तन्ने दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज की थी। तन्ने नु अपने नाल बठा लिया। जद भी कोई इंसान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नु मथा टेक दे, ओ भगत तन्ने नु भी मथा टेक दे। भगत तन्ना जी दे शब्द गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज ने, जेड़े उपदेश करते ने, ऐ भाई उस परमेश्वर दी बंदगी करो, सारिया दी उपालना करने वाला है, तू बंदगी कर, तेरी भी उपालना करेगा। दुनिया दी चिंता छाड़ दे, नाम दी चिंता कर, क्योंकि उदा नाम बड़ा प्यारा ते बड़ा सोहना है।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

गोबिंद सिंह जी महाराज ने खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके पंजा प्यारियां नूं छकाया, उपरंत आप छकिया अते खालसा पंथ दी सिरजना करके सानू एक वखरा ही स्वरूप दे दिता, ताके सिख लखां विच कल्ला खड़ा होया भी दूरों ही नजर आवे। इसे करके अज असी बड़े मान नाल एक कह रहे हां, साडा मुंह मुहांदरा वखरा है, साडा रूप वखरा, साडा रंग वखरा, किसे कौम दे नाल नहीं मेल खांदा, तुरिया आउंदा है साडा पर संग वखरा, साडी आत्मा दे लक्षण वखरे ने, साडे जिस्म दा हर एक अंग वखरा, साडी मौत जहान तो वखरी है, साडा जिंदगी जीउण दा ढंग वखरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अकाल अकैडमी गुरुद्वारा बड़ू साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश दियां बीबियां दे ढाडी जथे दी इन्नी सेवा प्रवान करो, बुलाओ फतेह ते आखो गज के वाह।

जो कोई ओदे कोल आ गया है ओदी जुत्ती नहीं गंडी ओदी टुट्टी भी गंड दित्ती है। परमेश्वर दा भगत सी सत्संगत दुनिया कहदी सी

प्यार नाल सुनियो की नहीं करदा कोई रचना बांझी रखी जाए पर कई दफा ऐसिया चीजा बंदिश दे विच आउंदियां गवैशी विच जिसनू बिखड़े टेढ़े ढंग नाल थोड़ा जा गाया जांदा है ते आम जिन्हां सजना जां भैणां नू ताल सुर दी समझ ना होवे ते कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा हुंदा है जिहदे नाल चीज दा समुचा रस माणिया जांदा है। सो मैनू इस गल की हार्दिक प्रसन्नता होगी जे भैणां जां वीर लय सुर दे अंदर बोल सकन ते इस चीज नाल बोलन ते नहीं तां प्यार नाल सरवण करना इस शब्द दे विचों बहुत कुछ मिलना है।

छोड़िया क्यों चली जी मां ने आख्या जान न देसा छोड़िया सर जी जे तुठे हो ना देदास मेरी झोली पा दे सेवा छोड़ी करे गज के आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जिन्हां दे अज आगमन मनाए जा रहे हो इन्हां दी परदादी मां मां भानी सतसंग जी बड़ी बख्शिश होई है मां ते एक ते गुरु पुत्री है दूजा गुरु दे घरों है तीजे गुरु की मां है चौथे गुरु की दादी है गुरु अमरदास की सपुत्री है ते गुरु रामदास दे घरों है गुरु अर्जन साहब की मां है सर्वशक्तिमान सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब की दादी है सतसंग इस खानदान की मालिक है इस खानदान को जन्म देने वाली मां है जान लादे सा।

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलों मंग रहे हैं। ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलती हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे ने। पर गल कमाल दिए मंगल वाले बहुतात विच हन, जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दियां मंगां। पर हे परमात्मा, तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दियां मंगा कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है, ते साहिब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देन तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना की।

फिर मंगन जाइए। ऐसी मंग ना करिए जे दोबारा मंगनी पै जाए। कहते ने मंगना भी है तो एको बार मंग लो, क्योंकि परमात्मा को जो असी मंगना है वह मिल जाना है। ते मंगन लगे इस गल नू सोच लेना चाहिए कि मैं मंग की दे। हुण साहिब सानू एक गल समझांदे ने